राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती हो। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे, काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ मिठाई।

आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे मेरे अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छिप जाऊं ऐसे मेरे अंदाज नहीं, क्योंकि सूरज से दमकता ये स्वाद का जायका किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। की हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? वही आप सब आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो के खास दोस्त हैं, और दोस्तों का ख्याल रखना यही हमारा मकसद है। वैसे आचार्य 90 FM के ऑडियंस से मिलकर हमें बेहद खुशी ही होती है। भाई आज हमारे स्वाद का जायका इस शो पर हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की एक फेमस वाली चटनी। खट्टी मीठी और जरा सी तीखी टेस्ट वाली ये चटनी कच्चे आम से बनती है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र में बनने वाली ट्रेडिशनल चटनी है। गर्मियों के सीजन में इसे खाना कंपलसरी माना जाता है। जोक सपाट, आम की इस चटनी को सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में एकदम झटपट बनाया जा सकता है। लंच या फिर डिनर के साथ इसे खाना मतलब स्वाद का जायका निभाने जैसा ही है। महाराष्ट्र के वेस्टर्न रीजन में खास तौर पर इसे बनाया जाता है। कैरीचा तप्पू इस नाम से फेमस इस रेसिपी को चटनी भी कहते हैं और अचार भी कहते हैं। कैरीचा तप्पू इस रेसिपी को खिसवंती नाम से भी जाना जाता है। खिसवंती मीन्स मराठी भाषा में कद्दूकस करना है। वैसे कैरीचा तप्पू ये रेसिपी 5 स्वादों का कॉम्बिनेशन है। वो कैसे, तो गौर से सुनिए। इसमें है कच्चे आम का खट्टापन, गुड़ की मिठास, मिर्ची का तीखापन, मेथी दाना की कड़वाहट और नमक का नमकीन स्वाद। हो गए ना 5 स्वाद। कुछ महाराष्ट्रियन लोग इसमें सिंगदाना पाउडर और अचार का मसाला भी ऐड करते हैं। वैसे कुछ लोग इस तप्पू से पोहा भी बना लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो खाने की कोई भी चीज अगर फ्रेश हो तो ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है, बजाय इसके कि उसे कई दिनों तक जमा करके रखा जाए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे छोटे ऑडियंस बच्चा पार्टी इस रेसिपी को बनाने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। वो कैसे, कच्चे आमों को कद्दूकस करने में आपकी हेल्प चलेगी। तो हो जाइए तैयार कैरीचा तप्पू इस महाराष्ट्रीयन रेसिपी को बनाने। कैरीचा तप्पू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, ग्रेटेड रॉ मैंगो 2 कप मतलब कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम, ब्राउन गुड़ 1 कप, नमक 2 चम्मच या स्वाद के अनुसार, ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च डार्क रेड होती है और उसमें कम तीखापन होता है। फिर हमें चाहिए तेल 1/2 कप, राई 1 चम्मच, हींग 2 चुटकी, मेथी दाना 1/2 चम्मच। अब हम कैरीचा तप्पू बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले ग्रेटेड रॉ मैंगो को, ब्राउन गुड़, नमक और मिर्ची पाउडर को मिक्स कीजिए। इस मिश्रण को 5 to 10 मिनट्स के लिए साइड में रखिए। अब एक पैन में तेल गरम कीजिए, फिर उसमें राई डालें और उसे चटकने दें। मोहरी तड़तड़ू दे चांगली। फिर उसमें मेथी दाना डालिए। अब हींग का खुशबूदार स्वाद भी ऐड कीजिए। फिर गैस को बंद कर दीजिए। इस तड़के को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। याद रहे कि हमें इसे गर्म यूज नहीं करना। लगभग 5 मिनट के बाद उसे कैरी के मैरिनेट किए हुए मिश्रण पर डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर गरम तड़के को तप्पू पर डाला तो वो खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि तड़का ठंडा करके ही यूज करें। एक और टिप, अगर कैरी ज्यादा खट्टी है तो आप गुड़ की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। और हमेशा वाली खास टिप, खट्टी चीजों को कांच के बर्तन में ही स्टोर कीजिए। मेटल में खट्टी चीजें स्टोर करने से मेटल की क्वालिटी खराब हो सकती है। वैसे कैरी का ये तप्पू आप 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे रोटी पर फैलाकर रोटी का रोल बनाइए और अपनी छोटी भूख को इंस्टेंट जुगाड़ से मिटाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं कि कच्चे आम में कितने अच्छे गुण होते हैं? गर्मियों के सीजन में कच्चा आम खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कैरी ये एक सुपर फूड है।
सही मात्रा में कैरी खाना हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे कच्चे आम को नमक लगाकर खाने का मजा कुछ और ही होता है। 90s की जनरेशन को ये बात अभी तक याद होगी। भाई हमारे स्कूल के गेट के बाहर एक अंकल बेर, आंवला, इमली, हरी सौंफ और कच्चे आम के पतले टुकड़े बेचा करते थे। उन्हें खरीदने के लिए सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होते थे। तब हमें ये नहीं पता था कि ये सब चीजें ही रियल सुपर फूड है। सब बच्चे तो बस एज अ टाइम पास इन चीजों को खाते रहते थे, और सिर्फ खाते नहीं थे, शेयर भी करते थे। खाना शेयर करने से बच्चों की दोस्ती एकदम पक्की होती थी। वैसे आपका फेवरेट सुपर फूड कौन सा है? इस सुपर फूड की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है कैरी नाम का सुपर फूड। अभी अभी एक सुपर फूड खाया, नाम है जिसका कैरी। इसके अनोखे स्वाद ने गर्मी को बनाया बैरी। कैरी के टुकड़ों को पहले लगाओ नमक, खाकर ऐसी कैरी चेहरे पर आए चमक। कैरी को खाकर भगाओ तुम हीट, स्वाद है अनोखा जैसे पंछी की ट्वीट। आम के पेड़ पर सुर लगाती है कोयल, इसकी मीठी आवाज से मेरा मन हुआ घायल। कोयल भी जानती है कि आम है सुपर फूड। इतने गुणों से बनी है कैरी हमारी फेवरेट रॉबिनहुड। हर सीजन में आते हैं जायकेदार फल, और हमारी हेल्थ को फिट रखना यही है बीमारी का हल। देसी सुपर फूड से बढ़ाओ अपनी ताकत, अब तैयार है हम दुश्मनों की आएगी आफत। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, आप कहीं भी मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। वैसे समर वेकेशन मोड अब ऑन हो गया है और हमारे नन्हे दोस्त अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बेकरार है। तो पेश है हमारे स्पेशल मिकी एंड मिनी माउस फ्रेंड्स के लिए एक नॉन फायर रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाना है एकदम ही आसान। एक्चुअली ये चॉकलेट के लड्डू टाइप ड्राई फ्रूट्स वाली रेसिपी है और इसे बनाकर हमारे छोटे शेफ जरूर खुश होंगे। भाई हमें भी अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के चेहरे की स्माइल देखने का इंतजार है, तो देर किस बात की। चलिए अब हम सुनते हैं किड्स स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मारी बिस्किट्स 15 से 20, कंडेंस मिल्क 1 कटोरी, ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर 5-6 चम्मच, रोस्टेड या पफ्ड राजगीरा 2 चम्मच, अखरोट मींस वॉलनट्स 10-12, छोटे छोटे स्ट्रॉज 6, घी 1 चम्मच। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। अब सुनते हैं इसे बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मारी बिस्किट्स को मिक्सर में घुमाकर उसका पाउडर बनाइए। एक बड़े से बोल में मारी बिस्किट्स का चूरा और कंडेंस मिल्क को मिक्स कीजिए। इसमें कोको पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे मिक्स करने के लिए आप चम्मच यूज कीजिए। फिर इसमें वॉलनट्स के बारीक टुकड़े डालिए। आप छुरी की मदद से वॉलनट्स के टुकड़े कर सकते हैं या तो डायरेक्टली हाथ से भी कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 चम्मच वॉलनट्स के टुकड़े आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब अपनी हथेली पर थोड़ा सा घी लगाइए, फिर तैयार मिश्रण के नींबू साइज के बॉल्स बनाइए। अब आप अपने घी वाले हाथों से उसके लड्डू बनाना शुरू कीजिए। सारे लड्डुओं को आप एक साइड में रख दीजिए। अब एक प्लेट में बचे हुए वॉलनट्स मींस अखरोट के टुकड़ों को डालिए। फिर हर लड्डू को उस वॉलनट वाली प्लेट में रोल कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, लड्डू के ऊपर वॉलनट का एक लेयर बनेगा। जब सारे लड्डू वॉलनट लेयर के बन जाए तब हर लड्डू में एक एक छोटा स्ट्रॉ अंदर डालिए। ऐसा करने से लड्डू को लॉलीपॉप वाला लुक मिलेगा। अब इन सारे लड्डुओं को एक सुंदर सी प्लेट में अरेंज कीजिए। इसे डेकोरेट करने के लिए इस पर रोस्टेड राजगीरा को स्प्रिंकल कीजिए। इस तरह से आपके चोको वॉलनट पॉप्स अब रेडी हो गए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए और अपनी फ्रेंडशिप को स्वीटनेस से भर दीजिए।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका दोस्त होस्ट आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। हम लेके आए हैं आज एक ट्रैवल से भरी हुई कहानी। तो देखिए सफर का आगाज शुरू करते हैं। मुंबई सेंट्रल से निकली कोणार्क एक्सप्रेस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। प्लेटफॉर्म पे चाय वालों की आवाज, कुली की भागदौड़ और बिछड़ने वालों के आंसू सब धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। ट्रेन के S5 कोच में ऑलरेडी हंगामा शुरू हो चुका था। भाई साहब ये मेरी लोअर बर्थ है, एक तेज आवाज पूरे कंपार्टमेंट में गूंजी। एक आदमी अराउंड 45 साल का फॉर्मल शर्ट पहने हुए थोड़ा सा गुस्से में खड़ा था। नाम था राजीव मल्होत्रा। उसके सामने खड़ा था एक यंग लड़का, बियर्ड, हेडफोन्स, बैकपैक और आंखों में थोड़ी सी अकड़। नाम अमन शेख। अमन ने टिकट दिखाते हुए कहा, सर मुझे पता है लोअर आपकी है पर मेरी ऊपर है और मुझे वर्टिगो है, मैं ऊपर सो नहीं पाऊंगा। राजीव ने हाथ उठा दिया। भाई मुझे भी प्रॉब्लम है, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है नागपुर में, मैं पूरे दिन ऑफिस करके आ रहा हूँ, मुझे नीचे ही सोना है। अमन का टोन और गर्म हो चुका था। तो मैं क्या मजाक के लिए पूछ रहा हूँ आपसे? तब तक आसपास के पैसेंजर्स उन्हें देखने लग गए। एक आंटी ने अपने हस्बैंड को धीरे से कहा, हर ट्रेन में एक महाभारत तो जरूर होती है। ऊपर बर्थ पे बैठे 5 दोस्त हंसी रोक रहे थे। उनका नाम था कबीर, फैजान, रोहित, नीलेश और चिंटू। पांचों गोवा ट्रिप से लौट रहे थे और ऑलरेडी कंपार्टमेंट को पिकनिक स्पॉट बना चुके थे। कबीर ने धीरे से बोला, भाई लोअर बर्थ देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू है। सब हंस दिए पर नीचे माहौल और खराब हो रहा था। राजीव ने फाइनली गुस्से में कहा, देखो यंग मैन, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, जो सीट है उसी पे जाओ। अमन का पेशेंस टूट चुका था। सर आप जैसे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको लगता है एज ज्यादा हो गई तो दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? पूरे कोच में साइलेंस छा गया। राजीव की आंखें गुस्से से भर गई। माइंड योर लैंग्वेज। इसी बीच साइड लोअर पे बैठे एक लड़की ने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा, यार अर्जुन प्लीज कुछ बोलो ना। ये न्यूली मैरिड कपल था, अर्जुन और मीरा। शादी को सिर्फ 12 दिन हुए थे। मीरा ने रेड बैंगल्स पहनी हुई थी, आंखों में काजल था और फेस पे वो नई दुल्हन वाली सॉफ्टनेस। अर्जुन ने सिचुएशन संभालने की कोशिश तो की, सर अगर आप दोनों कंफर्टेबल हो तो मैं ऊपर पे शिफ्ट हो जाता हूँ। पर राजीव और अमन दोनों ईगो में आ चुके थे, नहीं, दोनों एक साथ बोले। 5 दोस्त फिर हंसी रोकने लगे। फैजान बोला, भाई ये लोअर बर्थ नहीं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। ट्रेन धीरे धीरे सिटी क्रॉस कर चुकी थी। आउटसाइड डार्कनेस बढ़ रही थी, अंदर ईगो। फाइनली TC आया। उसने टिकट्स देखे और कामली बोला, सीट एक्सचेंज वॉलंटरी होता है, कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा। अमन ने फ्रस्ट्रेशन में बैग ऊपर बर्थ पे पटक दी और बिना कुछ बोले ऊपर बर्थ पे चला गया। राजीव भी नीचे बैठ गया लेकिन दोनों के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा था। ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटे उन सबकी जिंदगी के सबसे अजीब सफर बनने वाले हैं। रात को अराउंड 11 बजे सब थोड़ा सेटल हो चुके थे। कबीर और उसके फ्रेंड्स अंताक्षरी खेल रहे थे। अरे भाई चुप हो जाओ, किसी पैसेंजर ने चिल्लाया। कबीर ने तुरंत हाथ जोड़ दिया, सॉरी अंकल लास्ट गाना। और फिर वो जोर जोर से गाने लगे, हम्मा हम्मा हम्मा। पूरा ग्रुप फट के हंस पड़ा। दूसरी तरफ मीरा खिड़की के पास बैठी थी। उसने धीरे से अर्जुन से पूछा, तुमने हनीमून के लिए ट्रेन ही क्यों चूज की? अर्जुन मुस्कुरा दिया, क्योंकि फ्लाइट में सफर खत्म हो जाता है, ट्रेन में यादें बनती हैं। मीरा ने आंखें घुमाई और कहा, इंस्टाग्राम कोट कम मारा करो। दोनों हल्के से मुस्कुराए। ऊपर बर्थ पे अमन हेडफोन्स लगा के लेटे हुए अभी भी सो नहीं पा रहा था। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। नीचे राजीव लैपटॉप खोलकर प्रेजेंटेशन देख रहा था। कभी कभी दोनों की नजर मिलती फिर दोनों साइड में देखते। ट्रेन रात को जंगल एरिया क्रॉस कर रही थी, बाहर अंधेरा था, अंदर ट्यूबलाइट की हल्की पीली रोशनी थी। एक अजीब सुकून भी था और थोड़ी सी बेचैनी भी। सुबह 4 बजे अचानक ट्रेन को जोर से झटका खाकर रुक गई। पूरे कोच में हलचल मच गई। क्या हुआ, कोई स्टेशन आया क्या, क्यों रुक गई ट्रेन? लोग उठने लगे। विंडो से बाहर देखा तो ना स्टेशन ना सिटी, सिर्फ एक छोटा सा गांव
और दूर तक सिर्फ जंगल। थोड़ी देर बाद न्यूज आई, इंजन में टेक्निकल प्रॉब्लम है, रिप्लेसमेंट इंजन आने 10 घंटे लग सकते हैं। व्हाट? पूरे कोच में आवाज गूंजी। क्या मतलब 10 घंटे? क्या रेलवे मजाक है? खाना कहाँ मिलेगा? नेटवर्क भी वीक था, ट्रेन एक सुनसान जगह पे अटकी हुई थी और वहीं से शुरू हुआ असली सफर।

स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद आचार्य 90 FM में। हम सुन रहे थे ट्रेन की एक दास्तां, एक ऐसी कहानी जो अब ट्रेन को रोक चुकी है और देखेंगे इस रुकी हुई ट्रेन में क्या क्या हादसे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह का सूरज चढ़ रहा था, सब पैसेंजर फ्रस्ट्रेटेड थे। राजीव की मीटिंग मिस होने वाली थी, अमन का इंपॉर्टेंट एग्जाम था, दोनों ऑलरेडी इरिटेटेड था। चाय वाला भी नहीं था, नेटवर्क भी नहीं। राजीव ने फाइनली इरिटेशन में कहा, इंडियन रेलवे कभी नहीं सुधरेगी। ऊपर बर्थ से अमन बोला, सर रेलवे को गाली देने से इंजन स्टार्ट नहीं होगा। राजीव ने सार्केस्टिकली कहा, हाँ तुम इंजीनियर हो ना सर, एटलीस्ट ब्लेम गेम तो नहीं खेल रहा, अमन ने कहा। राजीव उठ गया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अमन भी नीचे उतर आया, प्रॉब्लम आप हो, एटमॉस्फेयर फील कर रहा। पर तभी ट्रेन के बाहर से आवाज आई, कोई डॉक्टर है क्या? सब भागकर गेट की तरफ गए। एक एल्डरली अंकल को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, पैनिक मच गया। राजीव तुरंत आगे बढ़ा, साइड हो जाइए। उसने अपने बैग से मेडिसिन निकाली। अमन हैरान रह गया, सर आप डॉक्टर हो? राजीव ने ऑक्सीजन स्प्रे यूज करते हुए कहा, कार्डियोलॉजिस्ट। अमन चुप हो गया। थोड़ी देर में अंकल स्टेबल हो गए। सबने राजीव को थैंक यू बोला। अमन थोड़ा गिल्ट फील करने लगा। बाद में वो क्वाइटली राजीव के पास आया, सॉरी सर मुझे लगा आप बस एरोगेंट हो। राजीव हल्का सा हंस दिया, और मुझे लगा तुम बस बदतमीज हो, दोनों पहली बार मुस्कुराए। फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई। पता चला अमन मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट था, उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और वो अपनी मदर के साथ रहता था। राजीव ने पूछा, वर्टिको वाली बात सच थी? अमन ने हंसी रोक के कहा, 50%। राजीव जोर से हंस पड़ा, पहली बार। फिर राजीव ने कन्फेस किया, मैं एक्चुअली मीटिंग से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अमन चुप रहा। राजीव धीरे से बोला, मेरी वाइफ और बेटा दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, 3 महीने से प्रॉपरली बात नहीं हुई है। अमन ने पूछा, फाइट? राजीव ने सर झुका दिया, काम। थोड़ी देर साइलेंस रहा, फिर अमन ने स्लोली कहा, मेरे अब्बू भी काम में बिजी रहते थे, एक दिन अचानक चले गए और हमारे पास सिर्फ उनकी मिस कॉल्स रह गई। राजीव की आंखें भर

उसने पहली बार अपना फोन निकाला और वाइफ को मैसेज टाइप किया, आई मिस यू। नेटवर्क वीक था, मैसेज पेंडिंग, पर शायद इमोशंस डिलीवर हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर 10 घंटे के हॉल्ट में मीरा परेशान हो चुकी थी। वो 10 घंटे का हॉल्ट मानो मीरा के लिए नाइटमेयर बन चुका था। वॉशरूम डर्टी, हीट अनबेरेबल, नेटवर्क गॉन और ऊपर से भूख। अर्जुन, मुझे घर जाना है, वो ऑलमोस्ट रो पड़ी। अर्जुन ने समझाया, बस थोड़ा और वेट करते हैं, तुम्हारे लिए इजी है, तुम तो हर सिचुएशन में चिल रहते हो। अर्जुन चुप हो गया। मीरा और हाइपर हो गई, शादी के बाद पहली ट्रिप और ये हाल है। 5 दोस्त कॉर्नर में क्वाइटली पॉपकॉर्न मूड में सब देख रहे थे। फैजान ने धीरे से बोला, भाई हनीमून का ट्रेलर ही इतना इंटेंस है। कबीर ने उसको चप्पल मारी और बिना कुछ बोले ट्रेन से उतर गया। मीरा और इरिटेट हो गई, अब कहां चले गए। 1 घंटा बीत गया, हीट और बढ़ गई, मीरा परेशान। फाइनली दूर से अर्जुन दिखाई दिया, पूरा पसीने में भीगा हुआ, हाथ में एक प्लास्टिक बैग। मीरा ने गुस्से में पूछा, कहां थे तुम। अर्जुन ने बैग खोला, उसमें कोल्ड वाटर बॉटल्स थी, ग्लूकोज बिस्किट्स थे और एक छोटा सा गुलाब। गांव तक गया था, उसने स्माइल के साथ कहा, तुम्हें डिहाइड्रेशन हो रही थी। मीरा स्टन, तुम इतने दूर क्यों गए। हाँ, और वहां एक अंकल के गार्डन से ये फूल चुरा के लेके आया हूं तुम्हारे लिए। मीरा हंसी रोक ना पाई। अर्जुन ने उसके लिए सीट क्लीन की, बॉटल्स दी और क्वाइटली उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद मीरा ने कहा, सॉरी। अर्जुन ने पूछा, किस लिए। ओवर रिएक्ट करने के लिए। अर्जुन मुस्कुरा दिया, शादी में ओवर रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट्री होता है। दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई, ट्रेन स्टिल खड़ी थी। मीरा खिड़की के पास बैठी बारिश देख रही थी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, पता है मुझे लग रहा था तुम रिग्रेट करोगी। शादी। हाँ। मीरा ने उसके शोल्डर पर सर रख दिया, पागल हो गया। हाँ बस थोड़ा सा पागल हूँ, मीरा ने स्माइल करते हुए कहा। ट्रेन रुक गई है अर्जुन, पर शायद हम थोड़ा और क्लोज हो गए। और वो पहली बार उसके कांधे पे सो गई।

वेलकम दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आचार्य 90 FM में। जैसे कि हमने सुना, ट्रेन रुक चुकी है बहुत समय से और तरह तरह के लोग हैं ट्रेन में। जैसे डॉक्टर राजीव और अमन, एक डॉक्टर एक मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में जो नोकझोंक शुरू हुई थी अभी ट्रेन रुक जाने से, कहीं ना कहीं आके वो नोकझोंक खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर एक न्यूली मैरिड कपल अर्जुन और मीरा, जो हनीमून ट्रिप के लिए बाहर जा रहे थे पर शायद उनकी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था, तो वो भी अपनी डेस्टिनेशन ना पहुंचकर एक सफर में ही इतने क्लोज आ गए जो शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि डेस्टिनेशन में भी इतने क्लोज आ पाएंगे। तो ये दो कहानियां तो मुझे लगता है आपको सुन के मजा ही आया होगा, पर कहानी का अभी तीसरा भाग तो पेंडिंग है। तो चलते हैं कहानी के तीसरी स्टोरी। कबीर और उसका गैंग इनिशियली फुल मस्ती मूड में था, पर धीरे धीरे बोर्डम शुरू हो गया। नेटवर्क नहीं, म्यूजिक बैटरी डेड, ट्रेन स्टक। चिंटू ने कहा, भाई अगर और 10 मिनट यहाँ रहा मैं तो साधु बन जाऊंगा। नीलेश सडनली क्वाइट हो गया। कबीर ने नोटिस किया, क्या हुआ? नीलेश स्लोली बोला, गाइज एक बात बोलो, सब सीरियस हो, मैं कनाडा शिफ्ट हो रहा हूं। साइलेंस। व्हाट? नेक्स्ट मंथ। सब शॉक थे। फैजान ने फेक स्माइल दी, अच्छा जोक था। जोक नहीं है, सडनली उन पांचों की मस्ती हल्की पड़ गई। ट्रेन के हॉल्ट ने उनको एक जगह रोक दिया था और शायद पहली बार लाइफ में भी वो हॉल्ट हो चुके थे। कबीर ने स्लोली पूछा, बताया क्यों नहीं? नीलेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, डर लग रहा था यार, तुम लोग मेरे बिना एडजस्ट कर लोगे ना, पर शायद मैं तुम लोगों के बिना एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। साइलेंस। चिंटू की आंखें भर गई, साले इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। फिर धीरे धीरे बातें खुलने लगी, कैसे स्कूल बंक किया, कैसे एक ही लड़की पे सबके क्रश हुआ करते थे, कैसे फैजान फेल हुआ था, कैसे कबीर सीक्रेटली सिंगर बनना चाहता था। आर्स बीतने लगे। एक पॉइंट पे उन्होंने पूरे कोच के बच्चों के लिए गेम्स ऑर्गेनाइज किए, अंताक्षरी, स्टोरी टेलिंग, इवन राजीव और अमन भी ज्वाइन कर गए। पूरा कंपार्टमेंट एक फैमिली बन चुका था। एक ओल्ड अंकल ने हारमोनियम निकाला जो वो कैरी कर रहे थे।

उसकी माँ रो रही थी। मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, सब पैसेंजर सर्च करने में लग गए। अमन और राजीव टॉर्च लेकर बाहर निकले। कबीर और उसके फ्रेंड्स दूसरी साइड गए। फाइनली चिंटू को लड़की ट्रेन के पीछे ट्रक्स के पास खड़ी मिली। वो एक पपी के साथ खेल रही थी। सब ने चैन की सांस ली। उसकी माँ ने उसे गले लगा दिया। उस मोमेंट पे पूरे कोच को और क्लोज कर दिया। राजीव ने अमन के शोल्डर पे हाथ रख दिया। गुड जॉब पार्टनर। अमन मुस्कुरा दिया। मीरा क्वाइटली अर्जुन को देख रही थी। कबीर अपने दोस्तों को, सब बदल रहे थे। रात के 1 बजे फाइनली रिप्लेसमेंट इंजन आया। पूरे कोच में क्लैप्स गूंजने लगी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। सबको अजीब सा फील हुआ, जैसे कोई चैप्टर खत्म होने जा रहा हो। राजीव ने अमन को अपना कार्ड दिया। इंटर्नशिप चाहिए हो तो कॉल करना। अमन स्माइल्ड। लोअर बर्थ वाले अंकल थैंक यू। राजीव हंस पड़ा। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा हुआ था टाइटली। कबीर और उसके फ्रेंड्स गेट पे खड़े हवा फील कर रहे थे। नीलेश धीरे से बोला, यार लाइफ भी ट्रेन जैसी होती है ना। कबीर ने पूछा, कैसे? कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग होते हैं जो सफर में मिलते हैं। सब चुप हो गए। ट्रेन डार्कनेस चीरते हुए आगे बढ़ रही थी और उन 10 घंटों ने स्ट्रेंजर्स को कहानी बना दिया। 2 महीने बाद राजीव दिल्ली गया। उसने फाइनली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। अमन को उसके हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिल गई। मीरा और अर्जुन अब भी कभी कभी उस ट्रेन जर्नी पे हंसते हैं। मीरा के फोन में अब भी वो सूखा हुआ गुलाब रखा हुआ है। और 5 दोस्त, नीलेश कनाडा चला गया पर हर संडे वीडियो कॉल होती है। उसका नाम रखा गया है S5 कोच मीटिंग। कबीर अब भी गाता है और जब भी वो मुसाफिर हो यारो गाता है, उसे वो 10 घंटे याद आते हैं। वो ट्रेन, वो बारिश, वो फाइट्स, वो हंसी और वो लोग जो सिर्फ एक सफर के लिए मिले थे पर जिंदगी भर याद रहेगा। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी का हर एक दिन एक सफर की तरह होता है। एक ऐसा सफर जिसकी हमने कभी कल्पना की नहीं होती है। सफर के लिए जरूरी नहीं कि हम ट्रेन के सफर पर निकल पड़े या किसी कार के सफर पे निकल पड़े या बाइक राइड के लिए निकल पड़े। कभी कभी समंदर किनारे चलते हुए भी एक ऐसा सफर हम काट लेते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। कभी कभी बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट हमें जिंदगी का बहुत बड़ा मतलब सिखा जाता है। और ये कहानी से हमें यही पता चलता है कि भले जिंदगी कैसे भी शुरू क्यों ना हुई हो, पर आखिर में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि अपने दिल में कभी किसी के लिए बुरा ना रखे। भले कितने भी मतभेद क्यों ना हो, मनभेद ना हो, चाहे फिर वो दोस्ती हो, प्यार हो या फिर किसी स्ट्रेंजर से मुलाकात। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ आचार्य 90 FM पर कहानियों के गुल्लक में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आप सभी से अलविदा कहता हूँ। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानियों को सुनते रहिए, कहानियों को बुनते रहिए और नए नए मस्त मस्त गानों को सुनते रहिए।

सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी मेरी आवाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे मेरे अल्फाज नहीं। किसी महफिल में छुप जाऊं, ऐसे मेरे अंदाज नहीं। क्योंकि सूरज से दमकता ये स्वाद का जायका, किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। की हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? वही आप सब आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो के खास दोस्त हैं। और दोस्तों का ख्याल रखना यही हमारा मकसद है। वैसे आचार्य 90 FM के ऑडियंस से मिलकर हमें बेहद खुशी ही होती है। भाई आज हमारे स्वाद का जायका इस शो पर हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की एक फेमस वाली चटनी। खट्टी मीठी और जरा सी तीखी टेस्ट वाली ये चटनी कच्चे आम से बनती है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र में बनने वाली ट्रेडिशनल चटनी है। गर्मियों के सीजन में इसे खाना कंपलसरी माना जाता है। जोक सपाट, आम की इस चटनी को सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में एकदम झटपट बनाया जा सकता है। लंच या फिर डिनर के साथ इसे खाना मतलब स्वाद का जायका निभाने जैसा ही है। महाराष्ट्र के वेस्टर्न रीजन में खास तौर पर इसे बनाया जाता है। कैरीचा तप्पू, इस नाम से फेमस इस रेसिपी को चटनी भी कहते हैं और अचार भी कहते हैं। कैरीचा तप्पू इस रेसिपी को खिसवंती नाम से भी जाना जाता है। खिसवंती मीन्स मराठी भाषा में कद्दूकस करना है। वैसे कैरीचा तप्पू ये रेसिपी 5 स्वादों का कॉम्बिनेशन है। वो कैसे, तो गौर से सुनिए। इसमें है कच्चे आम का खट्टापन, गुड़ की मिठास, मिर्ची का तीखापन, मेथी दाना की कड़वाहट और नमक का नमकीन स्वाद। हो गए ना 5 स्वाद। कुछ महाराष्ट्रियन लोग इसमें सिंगदाना पाउडर और अचार का मसाला भी ऐड करते हैं। वैसे कुछ लोग इस तप्पू से पोहा भी बना लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो खाने की कोई भी चीज अगर फ्रेश हो तो ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है, बजाय इसके कि उसे कई दिनों तक जमा करके रखा जाए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे छोटे ऑडियंस बच्चा पार्टी इस रेसिपी को बनाने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। वो कैसे, कच्चे आमों को कद्दूकस करने में आपकी हेल्प चलेगी। तो हो जाइए तैयार कैरीचा तप्पू इस महाराष्ट्रियन रेसिपी को बनाने। कैरीचा तप्पू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, ग्रेटेड रॉ मैंगो 2 कप मतलब कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम, ब्राउन गुड़ 1 कप, नमक 2 चम्मच या स्वाद के अनुसार, ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च डार्क रेड होती है और उसमें कम तीखापन होता है। फिर हमें चाहिए तेल 1/2 कप, राई 1 चम्मच, हींग 2 चुटकी, मेथी दाना 1/2 चम्मच। अब हम कैरीचा तप्पू बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले ग्रेटेड रॉ मैंगो को, ब्राउन गुड़, नमक और मिर्ची पाउडर को मिक्स कीजिए। इस मिश्रण को 5 to 10 मिनट्स के लिए साइड में रखिए। अब एक पैन में तेल गरम कीजिए, फिर उसमें राई डालें और

कैरी ज्यादा खट्टी है तो आप गुड़ की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। और हमेशा वाली खास टिप, खट्टी चीजों को कांच के बर्तन में ही स्टोर कीजिए। मेटल में खट्टी चीजें स्टोर करने से मेटल की क्वालिटी खराब हो सकती है। वैसे कैरी का ये तक्कू आप 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे रोटी पर फैलाकर रोटी का रोल बनाइए और अपनी छोटी भूख को इंस्टेंट जुगाड़ से मिटाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं कि कच्चे आम में कितने अच्छे गुण होते हैं? गर्मियों के सीजन में कच्चा आम खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कैरी एक सुपर फूड है। सही मात्रा में कैरी खाना हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे कच्चे आम को नमक लगाकर खाने का मजा कुछ और ही होता है। 90s की जनरेशन को ये बात अभी तक याद होगी। भाई, हमारे स्कूल के गेट के बाहर एक अंकल बेर, आंवला, इमली, हरी सौंफ और कच्चे आम के पतले टुकड़े बेचा करते थे। उन्हें खरीदने के लिए सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होते थे। तब हमें ये नहीं पता था कि ये सब चीजें ही रियल सुपर फूड है। सब बच्चे तो बस एज अ टाइम पास इन चीजों को खाते रहते थे, और सिर्फ खाते नहीं थे, शेयर भी करते थे। खाना शेयर करने से बच्चों की दोस्ती एकदम पक्की होती थी। वैसे आपका फेवरेट सुपर फूड कौन सा है? इस सुपर फूड की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है कैरी नाम का सुपर फूड। अभी अभी एक सुपर फूड खाया, नाम है जिसका कैरी। इसके अनोखे स्वाद ने गर्मी को बनाया बेरी। कैरी के टुकड़ों को पहले लगाओ नमक, खाकर ऐसी कैरी चेहरे पर आए चमक। कैरी को खाकर भगाओ तुम हीट, स्वाद है अनोखा जैसे पंछी की ट्वीट। आम के पेड़ पर सुर लगाती है कोयल, इसकी मीठी आवाज से मेरा मन हुआ घायल। कोयल भी जानती है कि आम है सुपर फूड। इतने गुणों से बनी है कैरी हमारी फेवरेट रॉबिनहुड। हर सीजन में आते हैं जायकेदार फल, और हमारी हेल्थ को फिट रखना यही है बीमारी का हल। देसी सुपर फूड से बढ़ाओ अपनी ताकत, अब तैयार है हम दुश्मनों की आएगी आफत। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, आप कहीं भी मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे समर वेकेशन मोड अब ऑन हो गया है और हमारे नन्हे दोस्त अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बेकरार है। तो पेश है हमारे स्पेशल मिकी एंड मिनी माउस फ्रेंड्स के लिए एक नॉन फायर रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाना है एकदम ही आसान। एक्चुअली ये चॉकलेट के लड्डू टाइप ड्राई फ्रूट्स वाली रेसिपी है और इसे बनाकर हमारे छोटे शेफ जरूर खुश होंगे। भाई हमें भी अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के चेहरे की स्माइल देखने का इंतजार है, तो देर किस बात की। चलिए अब हम सुनते हैं किड्स स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मारी बिस्किट्स 15 से 20, कंडेंस मिल्क 1 कटोरी, ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर 5-6 चम्मच, रोस्टेड या पफ्ड राजगीरा 2 चम्मच, अखरोट मींस वॉलनट्स 10-12, छोटे छोटे स्ट्रॉज 6, घी 1 चम्मच। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। अब सुनते हैं इसे बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मारी बिस्किट्स को मिक्सर में घुमाकर उसका पाउडर बनाइए। एक बड़े से बोल में मारी बिस्किट्स का चूरा और कंडेंस मिल्क को मिक्स कीजिए। इसमें कोको पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे मिक्स करने के लिए आप चम्मच यूज कीजिए। फिर इसमें वॉलनट्स के बारीक टुकड़े डालिए। आप छुरी की मदद से वॉलनट्स के टुकड़े कर सकते हैं या तो डायरेक्टली हाथ से भी कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 चम्मच वॉलनट्स के टुकड़े आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब अपनी हथेली पर थोड़ा सा घी लगाइए, फिर तैयार मिश्रण के नींबू साइज के बॉल्स बनाइए। अब आप अपने घी वाले हाथों से उसके लड्डू बनाना शुरू कीजिए। सारे लड्डुओं को आप एक साइड में रख दीजिए। अब एक प्लेट में बचे हुए वॉलनट्स मींस अखरोट के टुकड़ों को डालिए। फिर हर लड्डू को उस वॉलनट वाली प्लेट में रोल कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, लड्डू के ऊपर वॉलनट का एक लेयर बनेगा। जब सारे लड्डू वॉलनट लेयर के बन जाएं, तब हर लड्डू में एक एक छोटा स्ट्रॉ अंदर डालिए। ऐसा करने से लड्डू को लॉलीपॉप वाला लुक मिलेगा। अब इन सारे लड्डुओं को एक सुंदर सी प्लेट में अरेंज कीजिए। इसे डेकोरेट करने के लिए इस पर रोस्टेड राजगीरा को स्प्रिंकल कीजिए। इस तरह से आपके चोको वॉलनट पॉप्स अब रेडी हो गए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए और अपनी फ्रेंडशिप को स्वीटनेस से भर दीजिए।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख लेके आया हूँ कहानियों के गुल्लक में एक और कहानी। कहानी का नाम है एक हफ्ते की जिंदगी। कुछ कहानियां हमें जिंदगी का ऐसा सबक दे देती है जो शायद हमने कभी सोचा ही ना हो। हम जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानियों में होते कि हम कभी सोच भी नहीं पाते कि उन परेशानियों का हल एक छोटी सी चीज में छुपा हो। तो ये कहानी भी एक ऐसी है कि इतनी बड़ी परेशानियां कैसे हल हो जाती है। तो चलो देखते हैं।

सुबह का वक्त था। पहाड़ों के बीच एक पुराना सा आश्रम था। ना कोई शोर, ना शहर की भागदौड़, बस हवा की हल्की सी सरसराहट और पेड़ों पर बैठे पंछियों की आवाज। आश्रम के बाहर एक छोटा सा पत्थर का बोर्ड लगा था, जिसमें बस दो शब्द लिखे थे, शांति धाम। यहाँ रोज लोग आते थे, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, कोई बस सुकून की तलाश में। और आश्रम के बीच एक छोटे से चबूतरे पर बैठे थे संत आनंद गिरी महाराज। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बाल सफेद थे, लेकिन चेहरे पर एक अजब सा तेज था, एक अजीब सी रोशनी, जिसे सिर्फ कोई महापुरुष या कोई ऐसे संत महात्मा में देखा जाता है जो सिद्धि प्राप्ति कर चुका हो। आंखों में इतनी शांति थी कि जो भी उन्हें देखता उसका मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता। लोग कहते थे ये संत सिर्फ बात नहीं करते, दिल पढ़ लेते। उस दिन भी सुबह का वक्त था। संत आनंदगिरी महाराज चबूतरे पर आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। तभी आश्रम के गेट पर एक काली लग्जरी कार रुकी। ड्राइवर जल्दी से उतरा, दरवाजा खोला। कार से एक आदमी बाहर आता, महंगे कपड़े, ब्रांडेड वॉच, पॉलिश शूज, लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं। उसका नाम था राघव मेहता, शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, होटल्स, मॉल्स। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे, लेकिन अगर कोई उसके करीब जाता तो उसे समझ जाता कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। राघव धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के अंदर आया। उसने आसपास देखा, कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग शांत से दर्शन ले रहे थे और कुछ दर्शन लेने के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन राघव को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधा चबूतरे की तरफ बढ़ गया। संत आनंदगिरी महाराज ने आंखें खोली, उन्होंने राघव को देखा और बस एक पल में ऐसा कुछ हो गया कि राघव आनंदगिरी महाराज के इशारों पर नाचने लगा। जो अपने पैसों के घमंड से, अपनी ईगो से भरा पड़ा आदमी, उसे आनंदगिरी महाराज ने कहा, इधर आओ बेटा। राघव बिना कुछ बोले चुपचाप चबूतरे के पास बैठ गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, फिर आनंदगिरी महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं, पूछो। राघव ने हल्की सी और थकी हुई स्माइल देकर कहा, बाबा सवाल नहीं, बोझ। महाराज ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और कहा, बताओ क्या बोझ है। राघव ने गहरी सांस ली, बाबा मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, इज्जत, पावर, लोग मुझे सक्सेसफुल कहते हैं। वो रुक गया, फिर धीरे से बोला, लेकिन मुझे लगता है मैं अंदर से खाली हूं। आनंदगिरी महाराज चुप रहे। राघव बोलता गया, रात को नींद नहीं आती, हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं कोई मुझे धोखा ना दे दे, कहीं कोई मेरी प्रॉपर्टी ना छीन ले, भाइयों से कोर्ट केस चल रहा है, बहन से बात बंद है, दोस्तों से झगड़ा हो चुका है। उसकी आवाज थोड़ी भर गई, बाबा मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं। महाराज ने कुछ पल तक उसको देखा, फिर पूछा, सच सुनना चाहते हो बेटा। राघव ने तुरंत सर हिलाया, हाँ हाँ बाबा मैं सच सुनना चाहता हूं। आनंदगिरी महाराज ने कहा, बेटा सच बहुत कड़वा होता है, शायद इस सच को तुम पचा भी ना पाओ, और शायद ये सच सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसकना चाहिए। पर राघव परेशान था, उसके पास कोई और
उपाय नहीं था, उसके पास कोई दूसरा सलूशन नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि जैसे तैसे उसके बस सवालों का उसे जवाब मिल जाए, उसके प्रॉब्लम्स का उसे सलूशन मिल जाए। राघव ने जब उनसे कहा कि तुरंत जी बाबा मुझे जवाब बता दीजिए, मैं क्यों परेशान हूं, मुझे सच बता दीजिए, तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। राघव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मतलब? महाराज ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। राघव के पैर के नीचे की जमीन की सतह एक पल में उसे उसके वो बचपन से लेके अब तक के वो सारे दिन एक पल में उसे नजर आ गए। एक हफ्ता? राघव ने कहा, बाबा क्या मैं मरने वाला हूं? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, इस एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे जितने बचे हुए काम हैं उन कामों को पूरा कर लो, और ये एक हफ्ता तुम ऐसे जियो जैसे कोई नया बालक जब जन्म लेता है तब उसे ना दुनिया ना किसी चीज की पड़ी होती है, वो बस पवित्र होता है, वो बस देना जानता है, वो बस शांत रहना जानता है, वो बस खेलना जानता है, वो बस बस कोमल होता है, बस सच्चा होता है, और तुम ये अपनी जिंदगी का ये एक हफ्ता बस अपने आप से अपने प्रति सच्चे रहो।

0: वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शफीर। हम सुन रहे थे एक कहानी जिसका नाम था एक हफ्ते की जिंदगी, जिसमें आपने अभी सुना कि किस तरीके से आनंद गिरी महाराज ने राघव से कहा कि उसके पास सिर्फ एक हफ्ते की जिंदगी बची हुई है और वो एक हफ्ते अपनी जिंदगी के ऐसे जिए कि वो बहुत सच्चा हो, अपने आप से सच्चा रहे, सच बातें करे, सच चीज करे और जितना हो सके बस सच में रहे और अपनी इस बची कुची जिंदगी को बस वो सच के सहारे जिए। तो देखिए, सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। राघव का बंगलो शहर के सबसे महंगे एरिया में था। ह्यूज ग्लास वॉल्स, इटालियन मार्बल फ्लोर्स, स्विमिंग पूल, सर्वेंट, सिक्योरिटी, सब कुछ था। लेकिन उस रात उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। वो अपने बेडरूम में अकेला बैठा था, डिम लाइट जल रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता। उसने अपने आप से पूछा, अगर सच में मेरी जिंदगी बस एक हफ्ते की है तो मैं ये एक हफ्ते में क्या करूंगा। उसने सोचा और अचानक से उसके दिमाग में एक चेहरा आया। वो चेहरा था उसके बड़े भाई का। सालों से दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। कोर्ट में केस चल रहे थे, लॉयर्स, दलीलें, एक दूसरे पर इल्जाम और यही प्रॉपर्टी के चक्कर में राघव की फैमिली बट चुकी थी, आधे इधर आधे उधर। यही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ने उनकी पूरी फैमिली को तोड़ दिया था। उनके घर में ना शांति थी, हर महीने में कुछ ना कुछ लॉयर्स, कुछ ना कुछ ये वो, इन चीजों को लेकर राघव का बड़ा भाई और राघव दोनों बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे। राघव ने आंखें बंद कर ली। एक हफ्ता मैं क्या लेकर जाऊंगा अपने बड़े भैया के पास। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया, मैं कल सुबह सब कुछ ठीक कर दूंगा। राघव ने जैसे माने प्रण ले लिया कि वो अगले दिन सुबह जाकर उसके भाई के बीच में और उसके बीच में जो इतने दिनों से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था वो उसे सुलझा लेगा। अगली सुबह राघव अपने भाई अरविंद के घर आया, दरवाजा खटखटाया। अरविंद ने दरवाजा खोला, दोनों भाई एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे को देखते रहे। सालों की दूरी उनकी आंखों में नजर आ रही थी। अरविंद ने थोड़े ठंडी आवाज में उनसे बोला, क्या काम है? राघव की आंखों में आंसू आ गए। भाई मुझे माफ करो, राघव ने कहा। अरविंद हैरान रह गया, तुम ठीक हो राघव? राघव ने कहा, भाई मुझे घर में नहीं बुलाओगे? हाँ हाँ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। राघव और अरविंद दोनों चेयर पर बैठ गए। राघव की आंखें पश्चाताप से भरी हुई थी, उसके दिल पर मानो एक अजब सा बोझ था। वो बोझ के सहारे जैसे वो जी रहा। अरविंद ने कहा, राघव पानी पी लो। राघव ने पानी पिया। भैया ये फाइल प्रॉपर्टी केस की है, भैया मैं ये केस वापस ले रहा हूं। अरविंद शॉक में था। राघव तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? कुछ मतलब कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं भैया, बस मैं ये केस वापस ले रहा हूँ, मुझे अब आपसे नहीं लड़ना है। ये प्रॉपर्टी, ये बंगला, ये सब आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस ये आप रख लो, मैं केस वापस ले लेता हूँ, मैं कोर्ट में अपने वकील से कह दूंगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, मैं जो पेपर पे आप बोलोगे उस पेपर पे साइन कर दूंगा, बस मुझे माफ कर दो भाई, बस मुझे माफ कर दो। राघव ये कहते कहते रो पड़ा और रोते रोते वो अपने भाई के पैरों में गिर गया। अरविंद को ये देखा नहीं गया, उसने राघव को उठाया, अपने गले से लगाया और कहा कि नहीं मेरे भाई रोते नहीं हैं, शांत हो जा, मैंने तुझे माफ किया, शांत हो जा मेरे भाई, मैंने तुझे माफ किया। और ये कहते हुए दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। उस दिन राघव का मन हल्का हुआ, उसके दिल पर जो बोझ था वो भी हल्का हुआ। अब राघव ने डिसाइड कर लिया था कि उसके जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो इस एक हफ्ते में उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। जितने लोगों से उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं, जितने लोग उससे नाराज चल रहे हैं, जितने लोग उससे परेशान हैं, उन सारे लोगों को वो जाकर मनाएगा, उनसे माफ़ी मांगेगा, उनकी जो परेशानियां हैं या जितनी भी तकलीफें उन्हें हुई है उन सारी चीज़ों के लिए वो जाकर उनसे माफ़ी मांगेगा। और इसी माफ़ी मांगने के अगले सिलसिले में अगला नंबर था उसकी बहन का।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

वेलकम दोस्तों, हम सुन रहे थे राघव की कहानी, जैसे कि उसने जाकर अपने भाई से माफी मांग ली और अगला नंबर था वो जाने वाला था अपनी बहन के घर अपनी बहन से माफी मांगने। तो राघव अपनी बहन के घर पहुंचता है और डोर बेल रिंग करता है और जैसे डोर खुलता है राघव अपनी बहन नेहा के चरणों में गिर जाता है और उसे कहता है, बहन मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ी बदतमीजी से तुम्हारे साथ बिहेव किया था, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, मैंने तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली, तुम्हें कुछ दिया नहीं और बस हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा, बहुत सेल्फिश था मैं, पर मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मैं नहीं रखना चाहता तुम्हारा कुछ, ये फाइल जो है मेरे पास ये तुम रख लो, इसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, ये जो तुम्हारा हिस्सा है ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, बस बहन अब ये रख लो और मुझे माफ कर दो मेरी गलती के लिए। राघव को रोता हुआ देखकर उसकी बहन नेहा भी रोने लगी और उसने जैसे तैसे अपने भाई को शांत कराया। नेहा ने अपने भाई को माफ किया और दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते पीते राघव ने सोचा कि अगले दिन वो अपने दोस्त कबीर और समीर

इन दोनों से सॉरी कहेगा जो उसके बिजनेस पार्टनर्स थे और उसके बचपन के दोस्त भी थे। तो अगली सुबह राघव अपने घर से निकलता है, कबीर और समीर के ऑफिस में जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोनों उससे मिलने के लिए आते हैं बाहर, तीनों जाते हैं कैफेटेरिया में कॉफी पीने, जहां समीर और कबीर दोनों बैठे और दोनों को देखते हुए राघव बड़े भारी आवाज में और बड़ी पश्चाताप के साथ, उसकी आंखों में वो पश्चाताप नजर आ रहा था और उस पश्चाताप के साथ वो कबीर और समीर से सॉरी कहता है। जब राघव सॉरी कहता है तो कबीर और समीर देखकर शॉक हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं, पागल है क्या यार, तू इतने साल के बाद मिलने आ रहा है और सॉरी बोल रहा है, हमने तो कभी इन चीजों को अपने दिल में रखा ही नहीं था, तू हमारा पहले भी दोस्त था, तू हमारा आज भी दोस्त है और तू हमारा हमेशा दोस्त रहेगा, इन चीजों से हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। हाँ कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे बिजनेस को लेकर हमारे बीच में, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये धीरे धीरे सारी चीजें होते गई, राघव के दिल पर जो बोझ था वो धीरे धीरे उतरने लगा था। दिन गुजरते गए, राघव हर दिन किसी ना किसी से मिलता, किसी ना किसी से माफी मांगता, किसी ना किसी को गले लगाता, किसी को शुक्रिया बोलता। अब वो हर रात अच्छा महसूस करने लगा था, उसके अंदर की बेचैनी कम हो रही थी, उसे नींद आने लगी थी, दिल में एक अजीब सी शांति आने लगी थी। फिर आया सातवां दिन, सुबह राघव की आंख, उसने घड़ी देखी, फिर अपने हाथ देखे, फिर आसमान की तरफ देखा, मैं जिंदा हूं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, वो तुरंत कार में बैठा और सीधे आश्रम की तरफ चला गया। संत अनंतगिरी महाराज चबूतरे पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, राघव भागते हुए उनके पास आया, बाबा बाबा मैं जिंदा हूँ। संत महाराज ने आंखें खोली, राघव खुशी से बोल पड़ा, मैं जिंदा हूँ, आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया, अगर आप नहीं होते तो मैं मर जाता। संत महाराज हल्के से मुस्कुराए, फिर शांत आवाज में बोले, बेटा तुम मरने वाले तो थे ही नहीं। राघव हैरान रह गया, मतलब? संत बोले, मैंने तुमसे झूठ बोला। राघव बिल्कुल चुप हो गया। महाराज ने आगे कहा, तुम्हारी परेशानी मौत नहीं थी, तुम्हारी परेशानी तुम्हारा अहंकार था, तुम्हारे ग्रजेस थे, तुम सबसे लड़कर जी रहे थे, इसीलिए तुम्हारा दिल भारी था और वो सब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। जब तुम्हें लगा कि जिंदगी सिर्फ एक हफ्ते की बची है तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया, ईगो छोड़ दिया, लालच छोड़ दी, झगड़े छोड़ दिए, इसलिए तुम्हें सुकून मिल गया। राघव की आंखों से आंसू निकल गए। आनंदगिरी महाराज मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा अगर इंसान हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर जी ले तो जिंदगी कभी भारी नहीं लगेगी। राघव उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और वहां से जब वो निकल पड़ा तो इस बार आश्रम से निकलने के बाद वो एक बिल्कुल नया आदमी था, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में ना कोई ईगो था ना कोई छल कपट। अब उसने एक ऐसे रास्ते को थामा था जो सच का था और उस रास्ते पर वो आगे बढ़ना चाहता था। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमारी परेशानियां बहुत बड़ी होती है लेकिन उन परेशानियों का हल काफी छोटा होता है। ठीक उसी तरह जैसे ताला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो खुल जाता है महज एक छोटी चाबी से। तो हम अक्सर हमारी जिंदगी को ऐसे जीते हैं कि हमारा आखिरी दिन कभी आएगा ही नहीं, पर हम ये नहीं जानते कि मृत्यु ही आखिरी सत्य है और इस सत्य से भागा नहीं जा सकता।
इसे हम टाल भी नहीं सकते। बस इस सत्य से हम थोड़े दूर हैं। ये सत्य को हमें कभी ना कभी महसूस करना है, इस सत्य की ओर हमें कभी ना कभी जाना है। तो बस इस कहानी का अंत करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा सच के साथ रहे, सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि सत्य ही हमें परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, सत्य ही हमें परमेश्वर का दर्शन कराएगा, सत्य से ही परमेश्वर की प्राप्ति होगी और सत्य से ही हमें सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, हमने सुनी एक हफ्ते की जिंदगी की कहानी और इस कहानी का हो गया है अंत। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, लेके आएंगे एक नई कहानी जिसमें होंगी कुछ मजेदार किस्से, कुछ कहानियां, कुछ शब्द, कुछ कहानियां, कुछ कविताएं और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख लेता हूं आपसे अभी विदा, अलविदा।

राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।

सुनकर कर दे अंत सुना, ऐसी मेरी आवाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे मेरे अल्फाज नहीं। किसी महफिल में छिप जाऊं, ऐसे मेरे अंदाज नहीं। क्योंकि सूरज से दमकता ये स्वाद का जायका, किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। की हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? वही आप सब आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो के खास दोस्त हैं। और दोस्तों का ख्याल रखना यही हमारा मकसद है। वैसे आचार्य 90 FM के ऑडियंस से मिलकर हमें बेहद खुशी ही होती है। भाई आज हमारे स्वाद का जायका इस शो पर हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की एक फेमस वाली चटनी। खट्टी मीठी और जरा सी तीखी टेस्ट वाली ये चटनी कच्चे आम से बनती है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र में बनने वाली ट्रेडिशनल चटनी है। गर्मियों के सीजन में इसे खाना कंपलसरी माना जाता है। जोक सपाट, आम की इस चटनी को सिर्फ 5-10 मिनट्स में एकदम झटपट बनाया जा सकता है। लंच या फिर डिनर के साथ इसे खाना मतलब स्वाद का जायका निभाने जैसा ही है। महाराष्ट्र के वेस्टर्न रीजन में खास तौर पर इसे बनाया जाता है। कैरीचा तप्पू इस नाम से फेमस इस रेसिपी को चटनी भी कहते हैं और अचार भी कहते हैं। कैरीचा तप्पू इस रेसिपी को खिसवंती नाम से भी जाना जाता है। खिसवंती मीन्स मराठी भाषा में कद्दूकस करना है। वैसे कैरीचा तप्पू ये रेसिपी 5 स्वादों का कॉम्बिनेशन है। वो कैसे, तो गौर से सुनिए। इसमें है कच्चे आम का खट्टापन, गुड़ की मिठास, मिर्ची का तीखापन, मेथी दाना की कड़वाहट और नमक का नमकीन स्वाद। हो गए ना 5 स्वाद। कुछ महाराष्ट्रियन लोग इसमें सिंगदाना पाउडर और अचार का मसाला भी ऐड करते हैं। वैसे कुछ लोग इस तप्पू से पोहा भी बना लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो खाने की कोई भी चीज अगर फ्रेश हो तो ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है, बजाय इसके कि उसे कई दिनों तक जमा करके रखा जाए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे छोटे ऑडियंस बच्चा पार्टी इस रेसिपी को बनाने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। वो कैसे, कच्चे आमों को कद्दूकस करने में आपकी हेल्प चलेगी। तो हो जाइए तैयार कैरीचा तप्पू इस महाराष्ट्रियन रेसिपी को बनाने। कैरीचा तप्पू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, ग्रेटेड रॉ मैंगो 2 कप मतलब कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम, ब्राउन गुड़ 1 कप, नमक 2 चम्मच या स्वाद के अनुसार, ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च डार्क रेड होती है और उसमें कम तीखापन होता है। फिर हमें चाहिए तेल 1/2 कप, राई 1 चम्मच, हींग 2 चुटकी, मेथी दाना 1/2 चम्मच। अब हम कैरीचा तप्पू बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले ग्रेटेड रॉ मैंगो को ब्राउन गुड़, नमक और मिर्ची पाउडर को मिक्स कीजिए। इस मिश्रण को 5-10 मिनट्स के लिए साइड में रखिए। अब एक पैन में तेल गरम कीजिए, फिर उसमें राई डालें और उसे चटकने दें। मोहरी तड़तड़ू दे चांगली। फिर उसमें मेथी दाना डालिए। अब हींग का खुशबूदार स्वाद भी ऐड कीजिए। फिर गैस को बंद कर दीजिए। इस तड़के को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। याद रहे कि हमें इसे गर्म यूज नहीं करना। लगभग 5 मिनट के बाद उसे कैरी के मैरिनेट किए हुए मिश्रण पर डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर गर्म तड़के को तप्पू पर डाला तो वो खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि तड़का ठंडा करके ही यूज करें। एक और टिप, अगर कैरी ज्यादा खट्टी है तो आप गुड़ की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। और हमेशा वाली खास टिप, खट्टी चीजों को कांच के बर्तन में ही स्टोर कीजिए। मेटल में खट्टी चीजें स्टोर करने से मेटल की क्वालिटी खराब हो सकती है। वैसे कैरी का ये तप्पू आप 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे रोटी पर फैलाकर रोटी का रोल बनाइए और अपनी छोटी भूख को इंस्टेंट जुगाड़ से मिटाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं कि कच्चे आम में कितने अच्छे गुण होते हैं? गर्मियों के सीजन में कच्चा आम खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कैरी ये एक सुपर फूड है।
सही मात्रा में कैरी खाना हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे कच्चे आम को नमक लगाकर खाने का मजा कुछ और ही होता है। 90s की जनरेशन को ये बात अभी तक याद होगी। भाई हमारे स्कूल के गेट के बाहर एक अंकल बेर, आंवला, इमली, हरी सौंफ और कच्चे आम के पतले टुकड़े बेचा करते थे। उन्हें खरीदने के लिए सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होते थे। तब हमें ये नहीं पता था कि ये सब चीजें ही रियल सुपर फूड है। सब बच्चे तो बस एज अ टाइम पास इन चीजों को खाते रहते थे, और सिर्फ खाते नहीं थे, शेयर भी करते थे। खाना शेयर करने से बच्चों की दोस्ती एकदम पक्की होती थी। वैसे आपका फेवरेट सुपर फूड कौन सा है? इस सुपर फूड की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है कैरी नाम का सुपर फूड। अभी अभी एक सुपर फूड खाया, नाम है जिसका कैरी। इसके अनोखे स्वाद ने गर्मी को बनाया बेरी। कैरी के टुकड़ों को पहले लगाओ नमक, खाकर ऐसी कैरी चेहरे पर आए चमक। कैरी को खाकर भगाओ तुम हीट, स्वाद है अनोखा जैसे पंछी की ट्वीट। आम के पेड़ पर सुर लगाती है कोयल, इसकी मीठी आवाज से मेरा मन हुआ घायल। कोयल भी जानती है कि आम है सुपर फूड। इतने गुणों से बनी है कैरी हमारी फेवरेट रॉबिनहुड। हर सीजन में आते हैं जायकेदार फल, और हमारी हेल्थ को फिट रखना यही है बीमारी का हल। देसी सुपर फूड से बढ़ाओ अपनी ताकत, अब तैयार है हम दुश्मनों की आएगी आफत। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, आप कहीं भी मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे समर वेकेशन मोड अब ऑन हो गया है और हमारे नन्हे दोस्त अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बेकरार है। तो पेश है हमारे स्पेशल मिकी एंड मिनी माउस फ्रेंड्स के लिए एक नॉन फायर रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाना है एकदम ही आसान। एक्चुअली ये चॉकलेट के लड्डू टाइप ड्राई फ्रूट्स वाली रेसिपी है और इसे बनाकर हमारे छोटे शेफ जरूर खुश होंगे। भाई हमें भी अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के चेहरे की स्माइल देखने का इंतजार है, तो देर किस बात की। चलिए अब हम सुनते हैं किड्स स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मारी बिस्किट्स 15 से 20, कंडेंस मिल्क 1 कटोरी, ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर 5-6 चम्मच, रोस्टेड या पफ्ड राजगीरा 2 चम्मच, अखरोट मींस वॉलनट्स 10-12, छोटे छोटे स्ट्रॉज 6, घी 1 चम्मच। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। अब सुनते हैं इसे बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मारी बिस्किट्स को मिक्सर में घुमाकर उसका पाउडर बनाइए। एक बड़े से बोल में मारी बिस्किट्स का चूरा और कंडेंस मिल्क को मिक्स कीजिए। इसमें कोको पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे मिक्स करने के लिए आप चम्मच यूज कीजिए। फिर इसमें वॉलनट्स के बारीक टुकड़े डालिए। आप छुरी की मदद से वॉलनट्स के टुकड़े कर सकते हैं या तो डायरेक्टली हाथ से भी कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 चम्मच वॉलनट्स के टुकड़े आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब अपनी हथेली पर थोड़ा सा घी लगाइए, फिर तैयार मिश्रण के नींबू साइज के बॉल्स बनाइए। अब आप अपने घी वाले हाथों से उसके लड्डू बनाना शुरू कीजिए। सारे लड्डुओं को आप एक साइड में रख दीजिए। अब एक प्लेट में बचे हुए वॉलनट्स मींस अखरोट के टुकड़ों को डालिए। फिर हर लड्डू को उस वॉलनट वाली प्लेट में रोल कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, लड्डू के ऊपर वॉलनट का एक लेयर बनेगा। जब सारे लड्डू वॉलनट लेयर के बन जाएं, तब हर लड्डू में एक एक छोटा स्ट्रॉ अंदर डालिए। ऐसा करने से लड्डू को लॉलीपॉप वाला लुक मिलेगा। अब इन सारे लड्डुओं को एक सुंदर सी प्लेट में अरेंज कीजिए। इसे डेकोरेट करने के लिए इस पर रोस्टेड राजगीरा को स्प्रिंकल कीजिए। इस तरह से आपके चोको वॉलनट पॉप्स अब रेडी हो गए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए और अपनी फ्रेंडशिप को स्वीटनेस से भर दीजिए।

है, हर दिल पर छाई जायके की पहचान है, संस्कार और शक्ति का संगम हो जहां, ऐसे सुरीले मंच पर आपका स्वागत, यही हमारी शान है। आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। एप्पड़ी की रोइंगा, हाउ आर यू ऑल, कैसे आहत सगे? अरे भाई, ठीक होना ही चाहिए क्योंकि आप सब है आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो के खास दोस्त, जिन्हें मिलकर हमें खुशी ही मिलती है। जब से आप पधारे हैं, महक उठा है स्वाद का जायका, घर आंगन ऐसा एहसास होता है जैसे भारतीय सीमा को आपने बनाया नायका। जोक्स अपार्ट, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो ओरिजिनली अमेरिकन है, लेकिन उसमें मैंगो ऐड करके हमने उसे देसी रूप दे दिया है। वैसे बच्चा पार्टी स्पेशल ये रेसिपी हम हमारे नन्हे ऑडियंस के लिए खास बना रहे हैं। नॉन फायर टाइप की ये रेसिपी आप घर के बच्चों से जरूर बनवाइए। ईयर 1915 के दशक में मुंबई और दिल्ली में ये काफी फेमस रेसिपी थी। तो तैयार हो जाइए हमारी आज की रेसिपी को सुनने, जिसका नाम है मैंगो मिल्कशेक। एकदम टेस्टी और क्रीमी लगने वाला ये मैंगो मिल्कशेक दिखने में सुंदर है ही, लेकिन इसका टेस्ट भी एकदम सुपर्ब है। सुपर से ऊपर है। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी सुनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पके हुए अल्फोंसो मैंगोस 2, इन्हें धोकर छील ले और छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, ठंडा दूध 2 कप, शक्कर 2 चम्मच, बर्फ 2-3 टुकड़े, वनीला आइसक्रीम 2 स्कूप्स, सोक्ड मिक्स ड्राई फ्रूट्स 1 चम्मच या मिल्क मसाला भी आप ले सकते हैं 1 चम्मच, और ढेर सारा प्यार क्योंकि आपके मन की भावनाएं इसमें उतरने वाली है। अब हम मैंगो मिल्कशेक की रेसिपी सुनते हैं। मिक्सी के जार में आम के टुकड़े, बर्फ, दूध, शक्कर और वनीला आइसक्रीम डालिए। इसमें ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। अब इस मिश्रण को एकदम स्मूथ और क्रीमी होने तक मिक्सर में घुमाइए। लगभग 2 से 3 मिनटों में ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। अब इसे सर्विंग ग्लास में निकालिए, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स या मिल्क मसाला डालकर इसे सर्व कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। शक्कर के बदले आप हनी मींस शहद को यूज कर सकते हैं। ओरिजिनली अमेरिकन रेसिपी को हमने आम काटकर एकदम खास इंडियन स्टाइल से बना दिया है। इसका क्रीमी टेक्सचर, मीठी खुशबू और अपनापन आपको आम का खास एहसास जरूर कराएगा। वैसे समर वेकेशन में हमारे नन्हे ऑडियंस ये नॉन फायर और क्विक रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप इसे जरूर बनाइए और मैंगो मूड एंजॉय कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। आज हम बात करेंगे भगवान चंद्र की मींस मून की। वैसे चांद का मतलब ठंडक है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार चंद्रदेव का वाहन 3 पहिए वाला एक रथ है। इस रथ में 10 बलवान घोड़े जोड़े हुए हैं। ये सब घोड़े सफेद रंग के हैं और इन सभी घोड़ों की आंखें और कान भी सफेद है। और खास बात यह है कि ये दिव्य घोड़े मन के समान वेगवान है, मतलब जैसे हमारा मन कैसे सोचता है फटाफट, वैसे ये घोड़ों का स्पीड है। भगवान चंद्रदेव का वर्ण गोरा है और इनके वस्त्र, रथ और घोड़े सब सफेद रंग के ही है। भगवान चंद्रदेव इस रथ में कमल के आसन पर विराजमान है। इनके सिर पर सोने का मुकुट और गले में मोतियों की माला, और इनके एक हाथ में गदा और दूसरा हाथ वर यानी आशीर्वाद मुद्रा में है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? वैसे आप अपने चांद को कौन से नाम से पुकारते हैं? मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे आम का मीठा और रसीला स्वाद किसे पसंद नहीं? अक्सर हम आम से मिल्कशेक, आइसक्रीम, आचार ये सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आम को सुबह के नाश्ते में यूज करके हम हमारे दिन की शुरुआत को कैसे खास कर सकते हैं?
अब नाश्ते में हम कई चीजें खाते हैं, जैसे उपमा, पोहा, दलिया, सैंडविच, इडली, डोसा या फिर पराठा, राइट? तो आज हम बात करेंगे मैंगो पराठा रेसिपी की। ये एक ऐसी रेसिपी है जो टेस्टी और इनोवेटिव तो है ही, लेकिन ये आपके नाश्ते को भी एक नया ट्विस्ट देगी और गर्मियों के इस सीजन में स्वाद का जायका ऐड करेगी। तो पेश है आचार्य 90 FM के ऑडियंस के लिए मैंगो पराठा की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: गेहूं का आटा 2 कप, नमक आधा छोटा चम्मच, गरम घी 1 चम्मच, पानी आटा गूंथने के लिए। ये हो गया पराठे के आटे का जरूरी सामान। अब इसकी स्टफिंग के लिए हमें चाहिए पके हुए आम का पल्प 1 कप, मींस लगभग 1 बड़ा आम, चीनी स्वादानुसार, यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच चीनी ले रही हूँ, इलायची पाउडर 1 चुटकी भर। वैसे 1 चुटकी इलायची पाउडर की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू, स्वाद का जायका है 1 चुटकी इलायची पाउडर, खुशबू का भंडार है 1 चुटकी इलायची पाउडर। वेल, जोक सपाट, अब आगे की इंग्रेडिएंट्स सुनते हैं। सौंफ आधा चम्मच, घी पराठे सेकने के लिए। अब हम इसे बनाते कैसे हैं वो सुनते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और नमक मिलाइए, फिर उसमें थोड़ा गरम घी मिलाइए, मींस लगभग 1 चम्मच, फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आटा गूंथ लीजिए। हमें आटा नरम गूंथना है, न ज्यादा सख्त न ज्यादा ढीला। फिर उस तैयार आटे को 15-20 मिनट्स के लिए ढककर रखिए, इससे आटा सेट हो जाएगा। अब हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं। एक मोटे बेस वाले पैन में मैंगो पल्प, शक्कर और इलायची पाउडर को मध्यम आंच पर पकाइए। इसे तब तक पकाना है जब तक ये मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए और इसका सारा पानी सूख ना जाए। जब इसका टेक्सचर जैम जैसे हो और ये पैन से अलग छूटने लगे, तब आप इसमें सौंफ डालिए। अब इस स्टफिंग को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब आप गूथे हुए आटे के नींबू के साइज के गोले बनाइए। हम आमतौर पर जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, वैसे ही तैयार सामग्री से मैंगो पराठा बनाइए। मींस आटे को थोड़ा सा बेलिए, फिर हल्के हाथों से उसमें तैयार स्टफिंग भरकर उसे धीरे धीरे बेलिए। बी केयरफुल, अंदर की स्टफिंग बाहर ना आ पाए। फिर उसे मीडियम फ्लेम पर तवे पर सेकिए। जब वो पराठा दोनों तरफ से हल्का सा पक जाए, तब उस पर घी लगाकर गोल्डन कलर आने तक पराठे सेकिए। फिर इन गर्मा गर्म पराठों को एक सर्विंग प्लेट में निकालिए। दही, आम का अचार या डायरेक्ट ऐसे ही आप इसे एंजॉय कीजिए। भाई, मैंगो पराठा बनाकर मैं तो थोड़ी थक गई। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं भी मत जाइए। मैं यूं गई और यूं वापस आई।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आरजी भारतीय सीमा और हमारे शो का नाम है स्वाद का जायका। आज हम बात करेंगे भारतीय पैरा स्पेशल फोर्सेस मींस पैरा एसएफ जवानों की। इंडियन आर्मी के सबसे एलीट और घातक कमांडो में इनकी गिनती होती है, जो अपनी क्रूर ट्रेनिंग और अदम्य साहस के लिए जाने जाते हैं। इस ट्रेनिंग में ड्रॉप आउट रेट 80% होता है। पैरा कमांडोज में सीधी भर्ती नहीं होती है, ये सिर्फ भारतीय सेना के मौजूदा सर्विंग पर्सोनल से चुने जाते हैं। इनका प्रोबेशन पीरियड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसमें विद इन 3 months पीरियड 80% से ज्यादा जवान ड्रॉप आउट होते हैं। ये कमांडो 30,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के माध्यम से कूदने में एक्सपर्ट होते हैं। टोटल 9 पैरा एसएफ को उनकी मैक्सिमम सीक्रेटिव ऑपरेशन के टोटल 9 पैरा एसएफ को उनकी मैक्सिमम सीक्रेटिव ऑपरेशन के कारण घोस्ट ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। ये पैरा एसएफ जवान रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये स्मॉल ग्रुप्स बनाकर दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं और वहां पर इम्पोर्टेंट टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमें नाज है भारत के ऐसे वीर जवानों पर जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा करते हैं। आचार्य 90 एफएम के ऑडियंस की तरफ से हम सब आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आरजे भारतीय सीमा। हम हमारे प्यारे ऑडियंस से अब पूछना चाहते हैं कि क्या आपने इंडियन मार्कोस मरीन कमांडोज के बारे में सुना है क्या? आज हम इंडियन नेवी सील्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इन जावाज सैनिकों को मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। ये कमांडोज आकाश, धरती और जल कहीं पर भी दुश्मन को सिर्फ 27 सेकंड्स में खत्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। सिर्फ 27 सेकंड। इनकी मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग की वजह से ये आतंकियों के लिए यमराज माने जाते हैं। 2.5 से 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 1,000 में से सिर्फ एक सिपाही मार्कोस बन पाता है। इनकी खास बात ये है कि सी सरफेस से 55 मीटर्स नीचे 15 मिनट ये बिना ऑक्सीजन के लड़ सकते हैं। मार्कोस कमांडोज अपनी हाई लेवल फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और परफेक्ट टारगेट के लिए एकदम फेमस हैं। हम नमन करते हैं भारत माता के उन सपूतों को जो इतनी खतरनाक सिचुएशन को पार कर हमारे देश की रक्षा करते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आरजे भारतीय सीमा। अब पेश है देशभक्ति पर छोटी सी कविता। कविता का नाम है मेरा देश। अपने देश की रक्षा करना केवल सैनिकों का कर्तव्य नहीं, देशभक्ति को मन में रखना ये बात है कितनी सही। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, कोई पूछे तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम। सरहद की हर हद पर तुम हो, लेते हैं जो स्वतंत्र सांस हम, उस हर सांस के रक्षक हो तुम। लेते हैं जो स्वतंत्र सांस हम, उस हर सांस के रक्षक तुम हो। कभी कारगिल में रखवाली या हो मुंबई में गोलीबारी, और इन्हीं से अपने हुनर दिखाएं। अनोखा सा इनका काम का अंदाज, अच्छे से करते हैं दुश्मन का इलाज। चाहे हो रात घनी या हो भोर, सख्त इनका पहरा देश के चारों ओर। हर चप्पे पर सुरक्षा आपकी, जल धरती और आसमान, भारत की सुरक्षा में है आपका अमूल्य योगदान। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम। वैसे हमारे वीर जवान मीन सैनिक दिन रात देश की सेवा में जुटे हुए हैं। इनके शौर्य की कई कहानियां अनकही भी है, इसलिए कहते हैं कि राह संघर्ष की चलता है, वो जो संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है।
भाई सूरज की चमक हरियाली में देखने का एक अलग सा मजा है, लेकिन हमारे आसपास के पेड़ अगर कम होते गए तो हरियाली कैसे दिखेगी भाई। लॉकडाउन के समय हमारे देश में कई अच्छी बातों की शुरुआत हुई, इसमें से एक है द ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ग्रीन वॉल इस नाम से ही पता चलता है कि ये नेचर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये ग्रीन वॉल गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है। ये फेमस ग्रीन वॉल 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है। वैसे जंगल में कई तरह के पेड़, पंछी और जानवर होते हैं, लेकिन हमने अपने फायदे के लिए जंगल को काटकर बंजर जमीन बनाई है और इस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन सी वाटर लेवल और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। टाइम बीइंग एसी और पंखे को चलाकर हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है ही नहीं। खेती के कामों में मेहनत और खर्चा होता है और खेतों में की गई मेहनत के अलावा हवा और पानी भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एयर वाटर और सॉइल पोल्यूटेड करने से हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। तो भाई अब इसका सॉल्यूशन ये है कि पेड़ लगाओ और उनकी देखभाल करो। वैसे अरावली ग्रीन वॉल को एज ए मीडियम यूज करके हमने जंगली जानवरों के लिए एक सेफ जगह तो बना ही ली है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में फैली ये ग्रीन वॉल 29 जिलों को कवर करती है। इस प्रोजेक्ट से बंजर जमीन को हरी भरी बनाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा और ना पानी की कमी होगी, खेती करने लायक जमीन, जंगली जानवरों का रक्षण, ऐसे फायदे भी होंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगी, जैसे कि जंगल सफारी, वनौषधि से रिलेटेड कारोबार वगैरह। वैसे आपने कभी किसी जंगली जानवर को नजदीक से देखा है क्या? यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम आपसे और भी बातें करेंगे। आई विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तब तक स्टे ट्यून्ड।

प्राची भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। वैसे हरियाली जितनी ज्यादा होगी गर्मी उतनी ही कम होगी, फिलहाल जो है सो है। यहाँ हमारे आसपास कोई ग्रीन वॉल तो है नहीं, तो बेचारे पंछी और जानवर करे तो क्या करे। यहाँ पर ना कोई नदी है, ना कोई तालाब या झरना, तो हम हमारे इन दोस्तों के लिए एक छोटा सा हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे, तो सुनिए। हम किसी कंटेनर में पानी भरकर किसी छांव वाली जगह पर उसे रख सकते हैं। हमारे घरों के आसपास जो फोर व्हीलर्स पार्क की है उसके नीचे कुत्ते और बिल्लियां हांफते हुए छुप जाते हैं। अब बेचारे जाए भी तो कहां जाए, तो इनके पानी पीने का इंतजाम हम कर ही सकते हैं। अब सपोज आपने वाटरमेलन या फिर मस्क मेलन खाया, तो उसके छिलके के पास वाला उसका हिस्सा आप पंछियों को खिला ही सकते हैं। उसे क्यों कचरे में फेंकना, अदरवाइज डिहाइड्रेशन की वजह से बेचारे पंछी भी बीमार पड़ सकते हैं। वैसे आपका फेवरेट पंछी कौन सा है,

भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपका फेवरेट पंछी कौन सा है। भाई फिलहाल तो मैंगो सीजन चल रहा है और गर्मियों में सुबह सूरज जल्दी उगता है। हर एरिया में सुबह कुहू कुहू की मधुर आवाज से लोग जग जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एशियन कोयल की। ये एक फेमस भारतीय पंछी है जो अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है। वैसे खास बात यह है कि कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। इतनी चालाक होती है कि वो उसके पहले कौवे के अंडों को नीचे गिराती है। ये पंछी दिखता तो है कौवे की तरह, लेकिन इसकी आंखें लाल रंग की होती है। इन्हें मोस्टली आम के पेड़ों पर देखा जाता है, वैसे जामुन के पेड़ों पर भी ये कभी कभार दिखती है। ये पंछी फ्रूट्स, कीड़े और कैटरपिलर को खाती है। केवल मेल कोयल ही वसंत के मौसम में मधुर कुहू कुहू की आवाज निकालती है। इनकी पूंछ कौवे से थोड़ी लंबी होती है। वैसे कोयल को भारत की कई भाषाओं में कविता में इस्तेमाल किया जाता है। अफ्रीका से उड़कर ये पंछी हमारे भारत देश में आते हैं, माइग्रेशन करते हैं। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। किसी ने क्या खूब कहा है, फूलों से सीखिए सबके जीवन में रंग भरना, पेड़ों से सीखिए ऊंचाइयों को छूना, कलियों से सीखिए मुस्कुराकर जीना, कांटों से सीखिए कष्टों से उभरना, पत्तों से सीखिए मस्ती में झूमते रहना और शाखों से सीखिए दूसरों को सहारा देना। क्योंकि प्रकृति कभी अपनी ही दी गई वस्तुओं पर अहंकार नहीं करती, लेकिन हम उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं तब हमें सबक जरूर सिखाती है। जनाब, दुनिया की यही रीत है कि जो भी आप बांटते हैं वही चीज आपके पास बढ़ती है, चाहे वो धन हो या अन्न, सम्मान हो या अपमान, नफरत हो या प्यार। इसीलिए सोच समझकर बांटिए, क्योंकि वही लौटकर आपके पास आएगा। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और हमारे इस शो का नाम है स्वाद का जायका। वैसे बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार इंसान वही है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। अरे भाई, परेशानी जिंदगी का हिस्सा ही है। बगैर परेशानी इंसान की पर्सनालिटी निखार कैसे लाएगी, क्योंकि इन मुसीबतों से ही इंसान जिंदगी जीने का मतलब समझता है, है कि नहीं। और जब इन मुसीबतों को पार करके हम कामयाबी हासिल करते हैं तब हमें रुकना नहीं है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष भी है, और जब तक संघर्ष है हमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है। कभी औरों की कामयाबी देखकर हम ये सोचते हैं कि ये इंसान कितना खुशनसीब है ना, लेकिन उस सफलता के पीछे कठिनाई से किया हुआ मुकाबला और बहुत सारी मेहनत भी होती है जनाब। एक बार सफलता मिलने पर हमें कुछ नया सीखना छोड़ना नहीं है, क्योंकि लड़खड़ाना, गिरना और संभलना, इसी का नाम तो जीवन है और यही जीवन का नियम है। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। न जाने क्यों आपसे मिलने के बाद आपसे ही मिलने की चाहत रहती है। स्वाद का जायका सुनकर दिल को चैन की राहत सी मिलती है। इस शो पर करेंगे खाने और गाने का इंतजाम। गौर फरमाइए हमारे शो पर, वरना बेरुखी का लगेगा आप पर इल्जाम। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। बिछड़ कर आपसे हमें कुछ और कहना नहीं, ये जुदाई परमानेंट नहीं, बस जल्द ही फिर से मिलना है। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला।